0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: This is me, Baby Bilal.
3: And it's me, Fireman Giles.
2: We are here to tell you about the Kids Watch show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here at the moment. Fireman Giles, where do you think he is?
3: I think he's probably sleeping somewhere.
2: Oh, okay. Well, whatever the case is, guys, make sure you tune in to
3: the Kids Round Show
2: and Inspire 105.1 FM.
3: The UK's finest.
2: Okay, then.
4: Hold on a minute. Sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay. This is Khalil Muhammad and...
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
6: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Farsi, Imam, Quranic reciter and Nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.

जिंदगी वक्त खाती है और जमाने निकल जाती है, कभी कभी सदियां हड़प कर जाती है और टस से मस नहीं होती, और कभी कभी एक लम्हे में कई इनकलाबात बर्पा कर देती है। बहरहाल जिंदगी जिंदगी है सामीन, और जिंदगी जो है वो जिंदगी के दरमियान ही रहती है, ऐसे जैसे अपने ही समंदर का खुद ही एक जजीरा हो। जिंदगी से पहले भी जिंदगी थी और जिंदगी के बाद भी जिंदगी ही होगी। जिंदगी मरती नहीं, मर सकती नहीं, ना ही ये हमेशा जिंदा रह सकती है। जिंदगी हमेशा कायम भी है और हमेशा तब्दील भी होती रहती है। बस यूं ही चलने वाले दो पैरों में कितना फर्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की तोहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं। इसी को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी जहां फूलने फलने का नाम है, वहां अपनी आग में जलने का नाम है। जिंदगी तख्लीक करती है और अपनी तख्लीक के मरहल में तहलील भी होती रहती है। इस तरह जिंदगी होने और ना होने के दरमियान ही रहती है। चलती बुझती जिंदगी बस उम्मीदों यास में रहती है। ये सफेद और स्याह धागे से बुना हुआ खूबसूरत मलबूस है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें कहके भी हैं, हिचकियां और सिसकियां भी। मैं अभी गुज़श्ता दिनों अपने देश में था और मेरे दाएं जानब जो थे वो कुछ किराएदार थे, गो कि वो दिन को दिहाड़ी लगाते काम करते और शाम को वो इकट्ठे बैठते, कहकों की आवाजें, गिगलिंग्स, जोक्स सुनाए जा रहे होते, पूरा खानदान इकट्ठा होता, उनके जो अजीज व अकारब उनमें भी कुछ अफराद वहां पर होते, वो मिल बैठकर खाना खाते। और हमारे बाएं जानब एक बहुत अमीर, लेकिन वहां से कभी आवाज नहीं है, बड़ी खामोशी है सामीन। जिंदगी गरीबों के कच्चे घरौंदों में भी सरशार रह सकती है और अमीरों के पक्के मोहल्लात में बीमार भी रह सकती है। जिंदगी अगर चाहे तो गर्दश हालात से मंसूब हो जाती है और अगर पसंद फरमाए तो गर्दश जमाओ मकान से बेनियाज होकर अपने लिए नए जहां पैदा करती रहती है। ये किसी फार्मूले में मुकैद नहीं हो सकती, इसे कुछ कह लीजिए, ये सुनती है, मुस्कुराती है और कुछ और ही रूप अख्तियार करके अपने उससे बाहर आ जाती है। जिंदगी को मुसलसल सफर कहा जाए तो कयाम क्या है, जिंदगी को बेदारी कहा जाए तो नींद और गफलत को क्या कहा जाए, अगर जिंदगी को मोहब्बत कह लिया जाए तो नफरत भी तो जिंदगी है, बल्कि नफरत ज्यादा जिंदा है। इंतकाम, गुस्सा, नफरत, हसद जिंदगी को ज्यादा एक्टिव रख सकते हैं, मुतहर्रक रख सकते हैं। बहरहाल मोहब्बत और नफरत जिंदगी ही के नाम है। अगर मजहब को जिंदगी माना जाए तो ला मजहबियत क्या है, अगर जिंदगी जमीन है तो आसमान क्या है, अगर मखलूक को जिंदगी कहा जाए तो मखलूक पैदा करने वाली जात को क्या कहा जाए। जिंदगी की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, इसे जानना और पहचानना भी मुश्किल है। एक राज है, ऐसा राज कि जिसने राज जान लिया वो मर गया और जो ना जान सका वो मारा गया, हार गया। जिंदगी
तलाश में है। किसकी तलाश? जिंदगी उसे तलाश करती है जो जिंदगी को तलाश करता है। जिंदगी मौत के ताकुब में है और मौत जिंदगी के पीछे आ रही है। दोनों दोनों की तलाश में हैं। जब तक दोनों में से एक का खत्म नहीं होता, ये खेल जारी रहता है, यानी नूर और जुल्मात का खेल, होने और ना होने का खेल, मानने और ना मानने का खेल, दिन और रात का खेल। हम कम से कम अपनी जिंदगी पर तो राजी रहे। बस जो जिंदगी पर राजी हो गया वही अल्लाह पर राजी हो गया, और जो अल्लाह पर राजी हुआ अल्लाह उस पर राजी हुआ। जिस इंसान पर इंसान राजी हो गए वो रजाए इलाही पा गया, जो इंसानों से राजी रहा वो राज पा गया। यही राज है।

0: रूह मट्टी से या मट्टी रूह से तंग है, रूह मट्टी से या मट्टी रूह से तंग है, दोनों के बीच शायद सुकून व अमन की जंग है। जिंदगी के दामन में बेपनाह और बेशुमार नियामतें हैं, इसमें ख्वाहिशें हैं, हसरतें हैं, उम्मीदें हैं, मायूसियां हैं, सदाकतें हैं, धोखे हैं, मेले हैं और तन्हाई हैं। जिंदगी समंदर है, अपने बादलों को नामालूम सफर पर रवाना करने वाला, उन्हें अलविदा कहने वाला, और फिर यही समंदर अपने मुसाफरों को, अपने दरियों को खुशामदीद कहने वाला भी है। जिंदगी से जिंदगी निकल रही है, जिंदगी में जिंदगी शामिल हो रही है, जिंदगी से जिंदगी जुदा हो रही है, जिंदगी से जिंदगी वासल हो रही है। दरअसल जिंदगी तो जिंदगी है, फराक व वसाल से बहुत बुलंद, हासिल व महरूमी से बहुत बेनियाज, अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों से बाखबर लेकिन गैर मुतासर। जिंदगी बहुत पुरानी है, बहुत कदीम है, बहुत बूढ़ी है, लेकिन यही जिंदगी बहुत नई है, बहुत जदीद है और बहुत जवान। हर कदीम कभी जदीद था और हर जदीद कभी कदीम होगा। यूं ये जिंदगी बयक वक्त कदीम और जदीद है, पुराने शहर और नए इंसान, पुराने इंसान और नए शहर। आज का इंसान पुराने खंडरात में खुश रहता है, ये देखना चाहता है कि वो लोग कौन थे जो इस खंडर में कभी आबाद थे, लेकिन ये खंडर किसी जमाने में महल्लात थे, पैलेसेस। ये इंसान पुरानी कायनात को दरियाफत करने निकला है, वो उसे तरक्की कहता है। ये महल्लात कभी रौनकों से भरे थे, यहां पर जिंदगी महफिल रवां थी, यहां पे खुशियां थी, और आज सब कुछ खत्म। सामीन, अभी हमारा वक्त हुआ है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के उस पार थोड़ा सा टच शायरी इशार पढ़ूंगा इंशाल्लाह, और उसके बाद प्रोग्राम का बाकी हिस्सा जारी और सारी रहेगा। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम। इंस्पायर एफएम, इंस्पायर 105.1 एफएम।
2: Allah, Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Perform good deeds by assisting neighbors, volunteering for charitable causes, and standing up to injustice and oppression. Your acts can help promote peace and fairness in society.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that No Comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk, or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: When we are ready to go outdoors, we say, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la

मुझे लगता था मैं कभी थक नहीं सकता, मुझे लगता था मैं कभी थक नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत थक गया हूं। जिंदगी से अपने अंदर मौजूद हर एहसास से, लाहासल उम्मीदों से, हर रिश्ते, हर बार के टूटते इतबार से, हत्ता के अपने वजूद से भी, पता नहीं क्यों मगर शायद आज के बाद किसी को वैसा नहीं मिलूंगा।

कहीं इश्क सजदे में गिर गया, कहीं शक सजदे से फिर गया, कहीं वश दर से वफा बना, कहीं इश्क हुस्ने अदा बना, कहीं इश्क ने सांप से डसवा दिया, कहीं इश्क ने नमाज को कजा किया, कहीं इश्क सैफे खुदा बना, कहीं इश्क शेरे खुदा बना, कहीं इश्क तूर पर दीदार है, कहीं इश्क ज़बह को तैयार है, कहीं इश्क ने बहका दिया, कहीं इश्क ने शाहे मिस्र बना दिया, कहीं इश्क आंखों का नूर है, कहीं इश्क कोही तूर है, कहीं इश्क तू ही तू है, कहीं इश्क अल्लाह हू है।

कब तक मेरी राहों में ये अंधेरा होगा, कब तक मेरी राहों में ये अंधेरा होगा, उबरेगा कभी सूरज अपने हाँ भी ये सवेरा होगा। सबक सीखा है मैंने माजी की खताओं से, सबक सीखा है मैंने माजी की खताओं से, मैं मुतमईन हूं कि आने वाला कल मेरा होगा। ये मसाइब ये दुख दर्द जमाने के, ये मसाइब ये दुख दर्द जमाने के, कुछ भी नहीं अगर मुयस्सर मुझे साथ तेरा होगा। बहार आएगी खिलेंगे खुल फिर से यहाँ, वीरान दरख्तों पर से परिंदों का।

ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, शैतान तो है जिंदा, हाँ इंसान मर गया। सजदों में सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची है रब से चाहतें और ईमान मर गया। बातिल को झूठ कहने की ताकत नहीं रही, हो हक सर बुलंद ये अरमा मर गया। ए इंसान हैरत है तेरी किस्मत के, है इंसान हैरत है तेरी किस्मत पे, कि किस तरह पैदा हुआ था खुशनुमा।

और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं, कनात न कर राल में रंगोबू पर चमन और भी, आशियां और भी हैं, अगर खो गया एक निशेमन तो क्या गम, मकामाते आगो फगा और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, उसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमाओ मकां और भी हैं, गए दिन के तनखा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं।

मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वसफ पैदा कर, जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर सच है मेरे इश्क में तो ऐ बनी आदम नगाए इश्क पैदा कर, जमाले जर्फ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूंगा मगर शर्त ये है कि अपने अंदर मेरी जुस्तजू तो पैदा कर। अगर ना बदलूं तेरी खातर हर एक चीज तो कहना, तू अपने आप में पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर। मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वसफ पैदा कर, जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर।

0: Megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
1: गीत गाते आप शार ये वादियां उतरिया और कोहसार यही तो है इंस्पायर एफएम की बहार।
2: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
3: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
4: Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
5: Join Imam Waz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
4: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
6: Every Friday at 5 p.m.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
8: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
9: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet Warren said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a muhajir, immigrant, is the one who gives up, abandons, all what Allah has forbidden. Allahumma ya man.

अब हम आ गए हैं एक अगले सेक्शन पर जिसका नाम है इल्तिफात। पहले मैं इल्तिफात का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर उसकी कुछ मिसालें कुरान में देखेंगे। आप में से जिनको दिलचस्पी है, इंग्लिश में इस पर एक बहुत बेहतरीन पेपर है जो प्रोफेसर अब्दुल हलीम ने लिखा है, इल्तिफात इन द कुरान, प्रोफेसर अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम अरब अब्दुल के स्पेलिंग मुख्तलिफ करते हैं, ABDEL अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम साहब जो हैं वो अजहर से तफसीरुल कुरान में उन्होंने अपनी PhD की, उसके बाद वो ऑक्सफर्ड मूव हुए, वहाँ पर वो कुरान यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कुरान स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं। मेरे जो कॉलीग हैं डॉक्टर सोहेब सईद, जो अजहर से ख़ुद भी पढ़े हुए हैं और फिर उन्होंने भी अपनी PhD यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की है, उन्होंने प्रोफेसर अब्दुल हलीम के तहत की है, तो उनकी तहकीक से भी हम बहुत फ़ायदा उठाते हैं, वो हमारे एडवाइज़र भी रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, काफ़ी उम्र के हो गए हैं अब। उनके बारे में एक बात आपको मज़े की बताता हूँ, उस बंदे की उम्र अब तकरीबन 90-92 साल तो होगी कम अज़ कम। उनके घर में गया, मैं लंदन में था, मैं उनके घर गया, कुछ आयत के बारे में उनसे पूछना था, उनसे बात की तो उनको सांस आने में मुश्किल होती है तो वो मशीन लगा के वो कभी कभी सांस लेते, तो बैठा उनके लिविंग रूम में, पहली दफ़ा मैं गया था तो बात की, तो बातों बातों में मुझे वो कहते हैं, वो उन्होंने अजहर से ग्रेजुएशन की थी 1955 में शायद, या 1957 इस तरह को, उस वक्त से कुरान पढ़ते पढ़ा रहे हैं, और मेरे नज़दीक अंग्रेज़ी में तर्जुमे में हमेशा

0: کوئی نہ کوئی خلل ہوتا ہے, لیکن بہترین ترجمے میں سے ان کا ترجمہ ہے قرآن کا, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا. خیر, ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, کچھ بات ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں, اپنا وہ ریسپریشن اٹھا کے کہتے ہیں نعمان, اردو میں بتاتا ہوں آپ کو, اب مجھے آ کے کچھ سمجھ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن. میں وہاں بیٹھا صوفے پہ پگھلنا شروع ہو گیا. انسان اس نے 80 سال اپنی زندگی کے قرآن پڑھنے میں لگا دیا, اب کہہ رہے ہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ قرآن کا اعجاز ہے, جتنا انسان اس کو پڑھتا ہے نا اتنا اس کو احساس ہوتا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور جتنا نہیں پڑھتا بڑا اعتماد ہوتا ہے, جی مجھے پتہ ہے قرآن میں کیا ہے. بڑے بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں جی جی ہاں مجھے پتہ ہے, پہاڑوں کے بارے میں بات ہے اور کچھ پچھلی قوموں کے بارے میں کچھ باتیں, کچھ کہانیاں ہیں, پتہ ہے مجھے. جس کو جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا اس کو اعتماد ہوتا ہے, یہ تو مجھے سمجھ آ گئی, یہ کیا بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے پتہ ہے پتہ ہے, بہت سن لیا. اور جو پڑھنے پہ آتا ہے نا پھر اس کو اپنی کم علمی کا ایسا اندازہ ہوتا ہے نا کہ میں نے تو بس قطرے پکڑے ہیں, میں نے قطرے, کچھ بھی نہیں آیا میرے ہاتھ. تو خیر, التفات بک نہیں آرٹیکل ہے ان کا, التفات ان دا قرآن, التفات ILTIFAAT, التفات. اچھا میں التفات کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا دوں, انہوں نے ویسے بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں, قرآن کی ڈکشنری بھی لکھی ہے انہوں نے. خیر, میں جب آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کو کہیں گے مخاطب, مخاطب کا صیغہ, تم آپ تو یہ سب مخاطب کے صیغے ہیں. اگر میں کہوں وہ لوگ یا وہ ادھر آئے کہ نہیں آئے, یا میں کہوں میری امی یہ کہہ رہی تھیں, یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ غائب کا صیغہ ہے. ایک ہے غائب کا صیغہ, انگریزی میں اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں, ایک ہے جب آپ کسی سے مخاطب ہیں وہ مخاطب کا صیغہ ہے, اور ایک ہے میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ متکلم کا صیغہ ہے. میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں, ایک ہے میں اور ہم, ایک ہے تم, تو اور تم اور آپ, اور ایک ہے وہ, ہے نا؟ سو متکلم, مخاطب اور غائب. اسی طرح ایک ہے ماضی, ایک ہے حال, ایک ہے مستقبل, ایک ہے واحد, ایک ہے جمع. قرآن کیا کرتا ہے, کبھی کبھی بات کر رہا ہوگا واحد میں, میرا رب کبھی بات کر رہا ہوگا واحد میں, فوراً غائب کی بات, بغیر کسی قومے کے, بغیر کسی اگلے پیراگراف کے, ایک ہی آیت کے اندر واحد میں بات ہو رہی تھی, اب جمع میں بات شروع ہو گئی, ماضی میں بات ہو رہی تھی, اب حال میں بات شروع ہو گئی, متکلم سے بات ہو رہی تھی, مخاطب سے بات شروع ہو گئی, ایک دم سے جو سوئچ ہوتا ہے نا ادھر سے ادھر فوراً. آج کل فلم میں نا, فلم میں ملٹیپل کیمرہ اینگلز ہوتے ہیں نا, آپ تو فلمیں دیکھتے نہیں, آپ اسلامی لوگ, آپ کو نہیں پتا, لیکن میں اوروں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھتے تھے جہالت کے دور کی بات ہے, ہاں, فلموں کے اندر ایک پہ کیمرہ, پھر ایک دم سے دوسرے پہ کیمرہ, پھر ایک دم سے وہاں کیا ہو رہا ہے, پھر واپس ادھر کیمرہ, پھر واپس ادھر کیمرہ, پھر وہاں مین وائل بیک ایٹ دا رینچ, یو نو, پھر پہاڑی پہ کیا ہو رہا ہے, پھر یہاں گھر پہ کیا ہو رہا ہے, سین بدلتے رہتے ہیں نا. تو یہ جو فلم ٹیکنالوجی ہے اس میں سین بدلتے ہیں ایسے ایسے, بیچ میں وقفہ نہیں آتا, اب اگلا سین پولیس اسٹیشن کے اندر ہوگا, اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کو بتائے بغیر وہ پولیس اسٹیشن میں کیمرہ پہنچ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ لیونگ روم میں پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد کچن میں پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد باہر میدان میں پہنچ جاتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور پھر کیمرہ آپ کو ماضی میں لے جاتا ہے, وہ ماضی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے ایک دم سے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے یہ ساری چیزیں جو آپ فلم ٹیکنیک میں دیکھتے ہو نا, یہ سارے اسالیب اور ان سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے التفات, التفات. اور التفات پہ بہت دقت, بہت باریک نظر رکھنی چاہیے, جب کوئی قرآن پڑھے تو التفات پہ نظر رکھے. قرآن کے بہت سارے اسالیب ہیں, بہت سارے اس کے سٹائلز ہیں, اس کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں, اس کی ایک خوبصورت خزانے جو ہے نا وہ اس کے التفات کے اندر ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ, اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. कुछ कुछ हफ्ते पहले मैं सूरत अत्तूर का मुताला कर ही रहा था, पढ़ा रहा था दर्स सूरत अत्तूर का। जन्नत के बारे में बात हो रही है, फाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम, खुशी खुशी होंगे उसके उस पर जो उनके रब ने उनको दिया होगा, खुश होंगे वो। ये मुतकल्लिम है, ये मुखातिब है, या ये गायब है? खुश होंगे वो जो उनको उनके रब ने दिया होगा। ववकाहुम रब्बुहुम अज़ाब अलजहीम, और उनको उनके रब ने जहीम के अजाब से, जहीम कहते हैं ऐसा शेर जिसकी आंखें खुल रही हों शिकार को देख के, आग जब भड़क रही हो अपने शिकार को देख के उस वक्त उसको जहीम कहा जाता है, जहीम के अजाब से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया होगा। ये कब की किसकी बात हो रही है? हाजिर, मतलब मुतकल्लिम, मुखातब, या गायब? गायब। अगली आयत पढ़ते हैं, कुलू वश्रबू, खाओ और पियो, हनीगन, बेफिक्र होके, खुशी खुशी, बिमा कुंतुम तअमलून, उसकी बुनियाद पर जो तुम करते रहे हो, तुम करते रहे हो। ये कौन सा सीगा है? मुखातब का सीगा है। अगर बात उन्हीं की हो रही होती पीछे वालों की जिस तरह पहले हो रही थी, तो यहां होता लियाकुलू या याकुलूना व यशरबूना हनीअन बिमा कानू यअमलून, यहां कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून। अजीब कलाम है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो बात हो रही है अभी पहली आयत में कि वो बड़े खुश होंगे उस पे जो उनके रब ने उनको दिया होगा, ये अभी की बात हो रही है मुस्तकबिल की बात हो रही है? सबको जाहिर है ना मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो दो बातें नोट करनी है उसके बारे में, वो किसी और की बात हो रही है और मुस्तकबिल की बात हो रही है। गायब किसी और के बारे में होती है ना, किसी और की बात हो रही है और मुस्तकबिल की बात हो रही है। अगली आयत में जब मैं कहूं खाओ पियो, दो चीजें बदल गई। एक तो मुझसे बात हो रही है, क्योंकि मुखातब कौन है? अब मैं हूं ना मुखातब। जब मैं कहूं तुम खाओ तुम पियो, मुखातब कौन हुआ? मैं। तो एक चीज जो बदली वो उनसे बात हो रही थी, अब एकदम से किससे? मुझसे बात होनी शुरू हो गई। और दूसरा क्या बदला? जब किसी से कहो खाओ पियो, तो क्या मुस्तकबिल में कह रहे होते या हाल में? हाल में। पहली आयत में और मुस्तकबिल, दो तरह की दूरियां। जो और है वो दूर है, और मुस्तकबिल भी क्या है? दूर है। और मुखातब करीब होता है और हाल करीब होता है। मुस्तकबिल तो दूर है, हाल करीब है। अल्लाह ताला ने इस इल्तिफात के जरिए क्या किया? हर अहले ईमान जो आयात पढ़े उसके जहन में एकदम से एक सफर हो, यहां से हिजरत करके मुस्तकबिल की बात हो रही थी जो कितने हजारों साल बाद होगा, जितने करोड़ों साल बाद होगा, और एक लम्हे में मुझे वो उस लम्हे के अंदर ले गया, और मुझे अब ये ख्याल अपने जहन में आया कि मेरा रब मुझसे खुद मुखातिब होके कह रहा है खाओ पियो। किस बुनियाद पे? उन आमाल की वजह से जो तुम करते रहे हो। यानी अब मैं अपने आप को मुस्तकबिल में पा रहा हूं, मैं खुद अभी जहनी तौर पे अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर ले गया, और जन्नत में ले ही नहीं गया, मुझसे मुखातिब भी है, और मुझसे मेरा रब कह रहा है खाओ पियो। और यही नहीं कह रहा खाओ पियो, कह रहा है क्यों खाओ पियो? क्योंकि तुम किस वजह से? उन अमाल की वजह से जो तुम करते रहे थे। लेकिन क्योंकि मेरा जहन एकदम मुझे मुस्तकबिल में ले गया, और मुस्तकबिल में मेरा रब अजीब माजी की बात कर रहा है, मुस्तकबिल में जाके मेरा रब मुझसे माजी की बात कर रहा है, लेकिन असल में वो बात कब की है? अभी की है। जैसे ही मैं इस आयत के सफर से निकला तो मुझे अंदाजा हुआ मुझे अमल कब करना है? अभी करना है। या अल्लाह कैसा वक्त का सफर। فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون। और इसमें सबसे बड़ा तोहफा इन आयात में तो उन्होंने आपको बताया ही नहीं, और वो क्या है कि देखें जन्नत में खाने को तो है, जन्नत में पीने को भी है। फर्ज करें कि ग्रेजुएशन पार्टी है, स्कूल में ग्रेजुएशन पार्टी होती है ना, तो टीचर स्कूल को सजाया हुआ है और सामने जो है अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, और जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं वो खा रहे हैं खाना। प्रिंसिपल आके एक बच्चे के हाथ के कंधे पे अपना हाथ रख के कहता है बेटा तुम पे बहुत फख्र है मुझे, बहुत अच्छा किया तुम, खाओ खुशी से खाओ, तुमने दिल खुश किया मेरा। उस बच्चे का खाना ज्यादा टेस्टी है बाकी सारे बच्चों से।
1: क्यों?
0: खाने की बात तो अलग है, खाने का जायका और है, वो जो बात जो शाबाश सुनने को मिली है ना, अच्छा काम किया तुमने बेटा, खूब अमल किया। जब आप किसी बड़े से सुनते हो तो क्या होता है, वो जो एक वो इंसान की जिंदगी बदल, उसको वो खाना भूल जाएगा, वो अल्फाज नहीं भूलेंगे, ऐसा ही होता है ना। कुछ लोग होते हैं अपने अब्बू से कोई नरम अल्फाज सुनने को तरस जाते हैं, बेटा बहुत फख्र है तुम पे, बहुत अच्छा किया तुमने, प्राउड ऑफ यू माय सन। बाप कहने को नहीं देता, वो कुछ भी दे देगा, वो गालियां दे देगा, तनकीद कर देगा, कभी प्यार से नहीं कहेगा बेटा बहुत फख्र है तुम पे। और बेटा तरस जाएगा सारी जिंदगी, एक दफ़ा मेरा बाप बस कह दे, एक दफ़ा कह दे, जिंदगी बदल जाए मेरी। मेरा टीचर कह देता है, मेरा बॉस कह देता है, मेरे दोस्त कह देते हैं, मेरे फला, मेरे अब्बू नहीं कहते बस। और अब्बू भी अजीब मखलूक हैं, वो बाकी सबसे तो कहते हैं मेरा बेटा माशाल्लाह, ओ हो ये, बेटे से नहीं कहेंगे। एक दफ़ा बेटा कमरे में आ जाए, फिर दोबारा आ गए तुम, उसको नहीं तसली देनी। इसी तरह अगर आप कहीं मुलाजमत कर रहे हो और कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉई हैं, हज़ारों मुलाजिम हैं, और कंपनी का CEO आके आपके डेस्क पे आके आपके साथ बैठ के कहे आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपको प्रमोशन दी जा रही है और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। प्रमोशन कोई भी दे सकता था, लेकिन मुझे उसने बैठ के खुद कहा ना कि मैं प्रमोशन दे रहा हूँ आपको, वो उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा अजीम लम्हा हो गया। यहाँ असल जो नेमत है ना जन्नत की, जो असल तोहफा है जन्नत का इन आयात में, वो ना खाना है ना पीना है, वो पता है क्या है कि अल्लाह खुद बराह रास्त मुखातिब होके कह रहे हैं तुम खाओ तुम पियो, अच्छे काम किए तुमने। सुभानअल्लाह, कुलु वश्रबु हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून। इसका उल्टा आप सीखते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको क्लास की मिसाल देता हूँ। यूनिवर्सिटी में क्लास होती है बड़े साइज़ की, जिस तरह यहाँ भी हॉल है ना, कभी कभी बड़े साइज़ की क्लास होती है। और जब बड़े साइज़ की क्लास होती है तो प्रोफेसर भी होता है और प्रोफेसर का एक असिस्टेंट भी होता है, पता होगा आप। तो असिस्टेंट का काम है कि वो पावर पॉइंट लगा दे या कंप्यूटर सेट कर दे या पेपर्स कलेक्ट कर ले सबसे, उसका ये काम होता है, ठीक है ना। और वो बाकी स्टूडेंट्स की ट्यूटरिंग वगैरह भी करता है, मदद भी करता है उनकी, ठीक है। अब फर्ज करें जो एक सेक्शन है क्लास का, मैं किसकी मिसाल बुरी दूँ, आपकी देता हूँ, एक सेक्शन ने इम्तिहान फेल कर दिया, सॉरी एक सेक्शन पास हो गया,
1: यस मैम,
0: और एक यहां मेरे साथ मेरा असिस्टेंट खड़ा है, तीन है, ठीक है। अच्छा, मेरा अपने स्टूडेंट्स के साथ एक ताल्लुक है, लेकिन असिस्टेंट का भी ताल्लुक है उनके साथ के नहीं है ना। अब मैं इस तरह मुड़ के कहूं तुमको मैंने कम सिखाया था, कम मेहनत की थी, इतना अच्छा तुम्हारे साथ असिस्टेंट लगवाया था, जिसको मदद चाहिए थी, जिसको रिव्यू चाहिए था, क्या क्या कसर नहीं छोड़ी मैंने, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे कि तुमने ये कारनामा दिखाया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, यू नो तुम लोग तो मुंह लगने के लायक नहीं हो। और फिर मैं कहूं देखा ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को देखो जरा। अब मैं जब अपने असिस्टेंट से बात कर रहा हूं तो मैंने उनसे क्या किया है, उनसे मुंह फेरा है, और ये मुंह, ये पता है क्या हुआ है, अभी मुखातब से गायब, मुखातब से गायब किया ना, ये मुखातब से जो गायब करना होता है ना, ये गुस्से की अलामत होता है। मैं इतना गुस्से में हूं तुमसे कि अब मैं तुमसे बात भी करने को तैयार, तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। समझ में आ रही है बात, असल बनू इसराइल से बात कर मुखातब होके, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ तुम पर हमने बादल का साया भेजा, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى तुम्हारे ऊपर हमने मन्ना और सलवा नाजिल किया। मुखातिब है या गायब है, كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ खाओ उन अच्छी चीजों में से जो हमने तुम्हें रिस्क में दी हैं। मुखातिब है अभी तक, अब देखना। وَمَا ظَلَمُونَا वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून उन्होंने हमारे साथ ज्यादती थोड़ी की, वो तो अपने साथ ज्यादती कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती नहीं की, वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे थे। ये कौन सा सीखा है? एक ही आयत के अंदर मुखातब से गायब, ये क्या हुआ? अल्लाह ताला का गुस्सा। इसे कहते हैं तबईद, बुअद से तबईद, दूर होना। कुरान में कभी कभार कलाम के अंदर अल्लाह करीब आते हैं और फिर अपनी नाराजगी कैसे इजहार करते हैं? दूर होके, इसे तबईद कहा जाता है। एक ही आयत के अंदर वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लमून। और फिर अगर उनसे बात नहीं हो रही तो उनके बारे में बात हो रही है, और बात हो रही है अपने रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमसे। इसका एक और मज़हर देखते हैं। फर्ज करें, दोबारा क्लास की बात करता हूं, अब आपकी बारी आई, इम्तिहान मैंने सबको दिया, दो लड़के हैं उन्होंने एग्जाम में चीटिंग की और मुझे पता है उन्होंने चीटिंग की, मैंने अभी उनको सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया। एक का नाम है करीम और एक का नाम है जैद, अगर करीम और जैद यहां पर हैं मेरी माफी। एक करीम और एक जैद। अब मैं यहां आके बैठा, मैंने कहा कुछ लोग समझते हैं कि वो जो भी कर लें हमें पता नहीं चलेगा, कुछ लोग समझते हैं मेहनत करें ना करें, अपने वालदैन ने जो उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि वो आकर यहाँ तालीम हासिल करें, उसका वो हक अदा ना भी करें, और बाकी सब इस पूरी तालीमी इदारे की, मेरी और इस नेमत की किसी की कदर ना करें और समझते हैं कि ऐसे ही बच जाएंगे। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं। जब मैं कुछ और कुछ और कुछ कह रहा हूँ तो मैं क्या गायब का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ या मुखातिब का? गायब, और गायब से होता यह है कि सारे बेफिक्र हो जाते हैं, कुछ लोग, कुछ लोग, मैं थोड़ी, कुछ लोग। और फिर मैं एकदम से कहूँ करीम जैद इधर आना ज़रा, अभी वो कुछ लोगों से क्या हुआ एकदम से? करीम और जैद फ़कद क़ामत क़ियामतुहुमा, उनकी तो क़ियामत शुरू हो गई। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन उनका नाम मैंने मुखातब किया ना, उन्हें जब मुखातब किया गायब से एकदम से मैं मुखातब पे आ गया तो क्या वो हाँ वो हमारे बारे में बात हो रही थी, हमारे बारे में बात हो रही थी। खतीब भी क्या करते हैं, मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ओए वो गायब से क्या किया उसने? और वो जब मुखातब करता है तो वो जो बैठा हुआ था ना फोन पे खेल रहा था गेम, उसको अब क़यामत का दिन याद आ गया, वो ओए से, वो गायब से क्या है? मुखातब। अब यहां देखना लियकफुरू बिमा आतैना हूं वलियतमत्तऊ, कहते हैं कि चले करने दे इन्हें कुफर, करने दे इन्हें नाशुक्री उन तमाम चीजों की जो हमने उन्हें दी है, करने दो इनको एंजॉय, मजे करें, ये तमत्ताऊ, करने दे उन्हें, उन्हें क्या सीखा है? फिर कहते हैं आखिर में वसौफ़ तअलमून फलसौफ़ तअलमून, बहुत जल्द जान जाओगे तुम सब, तुम सब। सुभान अल्लाह, लियकफुरू बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तऊ फसौफ़ तअलमून।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Allah Ta'ala ko kaisa gussa aata hai, takadu as-samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ard, aasman phatne tak aa jaate hain, zameen do tukde hone tak aa jaati hai har dafa jab koi kehta hai ki khuda ne beta liya। आसमानों और ज़मीनों से बर्दाश्त नहीं होता ये। ऐसा गुस्सा अल्लाह का किस बात पर कि कोई कहे कि खुदा ने बेटा लिया? ये है अल्लाह ताला का गुस्सा।